सजिलो पा नेपाल भाषा या ज्याज हो नेपाल यिनी त सुनादि पि सकल सित दुन गलन छ लस कुस जी रश्मि लगुजापति त नेपाल सम्ब जिन छ स व पि खुद जिल्ला गा षष्ठी मंगलबार झ्याबले मंगलबार थि त न ज्याज हो नेपाल जना वया गुदु अले निरामि भाजे मेजपि ज्याज हो स नेवा सुस ले नेवा बुख ते गुहे जी दक्ले नापा सुस सोनि ते त आवै गु आइतबा अष्टगादै गु अगस्त 9 तारिक त चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवस ख अले उखनु थुक्सी तस्को हे तजिक ज्याज हो या गु रका नेपाले न यो को हेट के चाहिँ वर्क आउट ज्याज म दु विशेषना झि नेवा त झिन आदिवासी जुर ओ ल्याख झिन व आदिवासी ल्याली थिनेमा झिगु हक अधिकारी लागि ख आदिवासी जनजाति महासंघ नेवा दे दबु थे न्यागु जातीय संस्था त अले आदिवासी जनजाति महासंघ दाले झिथेना न्यागु जातीय संस्था अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन जुलमला कुसा अर्गनाइजेसन जुला अले त आदिवासी जनजाति महासंघ या त्यो थो ज्याजोले झि नेवा त न फया फको योको बुतिका मागुदु ओल्या ख छिपिन आवेगो आइतबा थ थगु परम्परागत वेशभूषा पुना 10:30 बजे प्रिकुटी मण्डप थिङ्के प्रिकुटी मण्डप 11 बजे र्याली है अले ओ र्याली खुला मञ्चे भना से अन कार्यक्रम जी विविध अन फुड फेस्टिभल थिएन जु अन स्टल दु नेवा खाना नदु छि नेवा नसा नमा बपेदि नाप्नाप गुलेना जात जाति त्यसँग अन तै महला गुरुङजी अथे मगर तामाङ राई लिम्बु एकअप्स तगु अन स्टल हेर्न छिप्पिस थगु धय त योगु अनुरूप छिप्पिस ओ भपिया दिन जिल अलि नाप सांस्कृतिक अन च्याजो नदु अलि अन न आखला आदिवासी जनजाति महासङ्घे जम्मायाना चाहिँ ने खु जातीय संस्था त आबद्ध दु यसा तपाईँ आदिवासी जनजाति महासङ्घ न्याप्ले न छगु नेवा प्याख केनेगु याना होइछ मधु थुक्सी न स्टेजे नेवा धिमे प्याख या बोजाजी ज्याउ न श्वेत सिक्पी जाहिदी साँझी अलि नाप नेवा जुन ज्याली न सांस्कृतिक झाँकी सहित नेवा बाजाउँ त सहित चाहिँ ऊ ऱ्याली जुइगु ख एजा सिक्पिन त न मनको साका उखुनु लुमङका अन थ्याङ्का दिँदै यिना बिहा खल बाबुको सिजन ख बाबुल र घा चाहिँ छेचुना दिए मात्रै सिक्पिन त आग्रह वा वसा थगु अधिकारी लागि चाहिँ ऊ छगु शक्ति प्रदर्शन थिएन ख झि चाहिँ छप्प ख आदिवासी त रगा किनेको छगु हो त न ख एजिया ऊ हो त छेला सिक्पि सकल 10:30 बजे रेकर्डी मण्डपे थ्याङ्का दिँदै झि यिनामा या ज्याजो स आ दक्लेना पाङ्गु मे तेतेना ज्याजो नेपाली छ

Jepa tungka akron lo sukusa jazo Nepal esa Nepal e jazo chini na sana dilo jazo na po duji rasmila ale pradik soje ne di Ravindra jazo sa akron me gu bukha pakhe bani ati itna gu bukha kha Nepal basa kendre vibhage guru hana jazo yela guru punya lasta lumanti davya gosale बुधवार नेपाल भाषा केन्द्रीय विभाग यल दुखाया गुरु हना ज्याझोको सागदु दवय नाय यादव प्रसाद रञ्जितले अध्यक्षता ज्याझो ज्याझो मोपा नेपाल भाषा केन्द्रीय विभाग या प्रमुख सह प्राध्यापक डाक्टर राजनलाल जोशी त्वा देवस्याका उले जयना दिगु ख सकस्या छगु मिनेट मिगातिसिना थत बुसानिसि थनतक थिंगको पिं गुरुपिन्त लुमंका निहागु ज्याझोले सबिना महर्जन लस्कुस नचुबिया दिगु ख अले छसि कथ छिगु नेवा परम्परा कथ यहाँको जागेसिन अतिका कोखा खाका धौ सगतिका खे सँग बिया गुरु हना ज्याझो यागु ख नुगा ख तेगु झोले मु पहा सह प्राध्यापक डाक्टर जोशी गुरु शिष्य न्यामेसिगु जीवने न अनुशासन धैगु दक्ले त अधंगु ज्ञान ख धैगु ख वाचाका कना दिल अले विद्यार्थी पाखे न यो कोसेकिगु ज्या जुया सम्बुदु बनेगु धैगु प्रमाण पत्र कागजको मकुसे थम सेकागु ज्ञान व्यवहारेन छेलेमागु शिक्षक शरद वीर कसान कना दिल अथे शिक्षक दीपा महर्जन थपी बनेगु व बुङ्केगु ज्यान आफ्ना प जुया सङ्गु धासे जीवने बौद्धिक व व्यवहारिक ज्ञान आवश्यक जुगु ख करा दिल अथे जुया मिगया बनामिहे थौया गुरु जुई धैगु या दसु नेपाल भाषा केन्द्रीय विभाग जुगु खन वेकन कुला दिल अथे नुगा ख तेगु झोले गुरु मर्यादा व शिष्य मर्यादा दुने छुना ज्ञान या ज कालबिलिया मागु ख बनामी पाखे शकुन्तला महर्जन कना दिल हरेक सफलता लिउने छम गुरु दया हे चुनिगु खन बनामी ज्ञान राम श्रेष्ठ नेथना दिल बनामी अमिता रञ्जित तयारियागु शोध प्रबन्ध विभागीय नीति डाक्टर जोशिया त ल लहातसा बमिपी नाप छसी कथ गुरुपिन्त मतिनायछि विदुङका ग्वालियाना देवी सकलसित सुभाय विषय दबुया नाय रञ्जित ज्याझो कोच्याका दिगु ख आक्रो मेगु बुख पाखे भने तना धम्मावती गुरुमा उठ्वे वङ्गो गुरु फुनि खुनु गुई स्वध खेन अले वेक गुई स्वध खेङ्गु लस्ता नेवा झेलुवा पाखे भिन्तुना देशागु ज्याझो नजुल स्वदे धर्मावती गुरुमा गुरु पनि यदि गुई स्वदे किङ्गु लस्ता थिथि राजनीतिक दलले नेवा निहलुवा पिङ्स भिन्तुना देशा गुरु गुरु पनि यदि धर्मकीर्ति बिहार श्रीघले होना थति भिन्तुना देशागु ख फ्लाम उप प्रधानमन्त्री लिसे नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता प्रकाशमान सिंह ये महानगरपालिका या फ्लाम मेयर विद्यासुन्दर साक्ये ये महानगरपालिका या प्रवक्ता प्रवीण मानन्धर नेकपा या युवा नेता लिसे बागमती प्रदेश या फ्लाम मन्त्री बसन्त मानन्द धर लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय पुलाम कुलपति हृदय रत्न वज्राचार्य अथे क्षेत्रपाटी निशुल्क चिकित्सालय नायो डाक्टर मनोजमान श्रेष्ठ लिसे मेमेपी थिति व्यक्तित्व पिस गुरुमा या त खादा निएका ओस पोलिया भिउसा वता आयुया कामना यासे भिन्तुना देशागु ख तथे भिन्तुना देशाना दिपिन्त धम्मावती गुरुमानन सुभा देशासे बौद्ध धर्म या त जनजने अझ अप्पो थिङ्किगु नीति सकल सिया पाखे ग्वाले दुईगु भल्सान फोनका विजयागु ख लिपा कहे जुसा श्रद्धेय धर्मावती गुरुमा या त गुई सुद धकार यो 93 द किङ्गु लस्ता योको योको भिन्तुना देशाना जना अले थौ हे नेवादी दबुया छ्यान्जे मत राजा महर्जन वेकन या न थौ बुद्धि वेक या त न बुद्धि या लस्ता योको योको भिन्तुना देशाना जना खला वेक ये नेद केन नगा त हेदु गुरु तर तस्कहे ल्याम खन्दु वेक एजा न्याम्ले जति ल्याम ज्या सुनमा सुगु सुस्वास्थ्य दीर्घायु न कामना या नचना नाप सिक्मी सकल आगुली न थौ बुद्धि हना छौ पिन्त लुए कसै सबुतो सूरज वीर वज्राचार्य रसले दुदुमे थो बुद्धि मे सिक्पिन्त तेसा नचना

Agnala Sukusa Jazz on the Palace, Nepali Jazzo Chinina Suradilla, Jazzosa Jirashmila, Ali Previdi Ravindra, Nepali Jazzosa, Neva Susan Bukanta Tegu, Ali Neva Meta Hakibu Jazzungudu, Yamblet Hazuka, Adas Akonomigo Bukabakiwani, Asai, Yelaya Bukan Prativa Book. Bankia Sweeney Kogu Buddy or Prativas Mazia Saturn Savari Bukon. Prativa Book Banka, Togi Jin Sagu or Jinuguya Bonami Binta, Patis Safu Lal Hagudu. Prativa Book Bankia Sweeney Kogu Buddy or Prativa Samazia Saturn Savaya Jurelaka, Sachi Malaka Bonami Binta, Patis Safu Lal Haguka. Sato Aki Bhone, Sukravar Zuguziazoli, Mupa Yellow Mahanugur Palikaya Upamir, Manjali Sakya Bazrachari Lise, Samazia Naya, Doctor बजराज साके उपदार भिखारी पिंसा सफूल आराना दिगु खा समाजन दे दसन सच्ची मासोया अपो थीथी बनी कुथिया बनामी पिंता थू कथा निशुल का पाठ्य सफूल लाल हागु याना वया चंगु खा जिन छगु तगिया बनामी पिंता लाल हागु सफु उगु तगी कोसाका लित बिले की हाकमा जिन युगु तगिया सफु बिगु याना सुनागु खा समाज व्यवस्थापक शोभा बजराचाले कना दिगु दु Jazole Navana Dise, Mu Paha Bazra Tsaria, Safu Dayago Gyanya Bandar Zuli, Safu Nugu Pulangwe Orthajimoko, Ukinduni Daigo Gyanya Kha, Motopuna Zui Dase, Samas Pakhe Bonami Mosteta, Maste Prativayata Bolinki Guniti, Yago Jayata Bonami Pinsana, Saman Prabhak Grahanyana, Mena Tiana Bonita Inapena Dila, Samasya Duza, Doctor Pusparas Ras Kornikara, Samasya स्थापना व समाज यनावया चंगु ज्या बारे कना दिबु ख सन 1992 नेपाया गोप्टे भिरे जुगु थाई एयरवेज दुर्घटना लाना मधुम जापानी ल्याम सातो आकी अनुमति प्रतिभा समाज स्थापना जुगु ख नेपा चायु व जापानी ल्याम विमान दुर्घटना मदे व वगु बिमाया धिवा वेकय छेज पिन्छ कुपुन्डोले सातो आकी भवन देखा प्रतिभा समाज यात ललहागु ख समाजों सातो आकिया लुमंती दे दसां जुलाई 31 तारीख खुनु तगी 11 व 12 या बनामी मस्तेत सफु ललहागु याना वया चंगुदु अथे समाज मस्तेत प्रतिभा स्फुटन प्रस्फुटन जुगु चित्रकला लिसे थिथि ज्याझो याना वया चंगु खन डाक्टर राज कर्णिका र कना दिगुदु ज्याझोले हरिसिद्धि स्कूल श्री चण्डी स्कूल त्रि पद्म जगत सुन्दर बनेकुथि ट्रिनिटी जुबिलेंट केएमसी स्कूल दरबार हाई स्कूल अन्नपूर्ण उच्च माध्यमिक विद्यालय समृद्धि स्कूल युनाइटेड एकेडमी लक्ष्मी शिक्षा सदन निस्ट एवरेस्ट विश्वनिकेतन पीपल्स दीपज्योति स्कूल या भूमिपिंड पाठ्य सफु ललहागु ख प्रतिभा समाज नायक डॉक्टर बजराज साके सभापति जुगु ज्याझोले सदस्य सचिव करण नर्सिंह साके लस्कुस याना दिगु ख कारा बालागु ज्या याना चुंगुदु प्रतिभा बुक बैंक अलि थोज्या अजन यहाँका एंके फेमा दकाना काम न याना सुना आ ज्याझो सजी हाक्नो सबु मिनी स्वा मेडुंगा हान बुखजना हेगु हेजी

अलि पाङ्गु ती पातुङ काख्नो लसकुसे ज्याझो नेपाले छ नेपाले ज्याझो छिन्याना सुना दिलो अलि ज्याझो सजि रश्मिला प्रजापति प्राविधिक सञ्जनेदी रविन्द्र चौधरी ज्याझो सा आमे बुख पाखे भने केन्द्रीय विभागे उप प्राध्यापक डाक्टर बज्रमुनि बज्राचार्य नियुक्त जुगुदु त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल भाषा केन्द्रीय विभागे उप प्राध्यापक डाक्टर बज्रमुनि बज्राचार्य विभागीय प्रमुख पदे नियुक्ति चुयादिगुदु वेकलम हिग सोमबार निसे थगु पदभार ग्रहण नयाना दिगुदु अले डाक्टर बज्रमुनि बज्राचार्य बारे छुङख तेगु झोले वेक 2030 साले भूमख अन वेक या किसै मल्टिपल डिग्रीज तुदु विशेषना वेकलम पिएचडी बुद्धिस्ट स्टडिज याना दिगु खसा मास्टर चाहिँ वेकलम नेपाल भाषा व कल्चर याना दिगु ख अथे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा न वेकलम बुद्धिस्ट स्टडिज याना दिगु ख अले वेक चाहिँ मास्टर डिग्रीले गोल्ड मेडलिस्ट न ख न्युगुना मास्टर डिग्री नेपाल भाषा न कल्चर न अले न प वेक चाहिँ आछम एकेडेमिक मनुजे जुल ता इ न्हन से वेकल चाहिँ नेपाल भाषा बंके गु याना वइ छुंगु दु न प वेकल चाहिँ कल्चरल स्टडिज एकदमै रिसर्च न याना सुना दिगु दु विशेष याना चाहिँ नेवा बुद्धिज्म अले अथे पुटके युपरि झिगु संस्कृति युपरि इतिहास अले लोकल हेरिटेज डकुमेन्टेसन से वेकल चाहिँ याना सुना दिगु दु सा वेक चाहिँ विशेष याना कल्चरल एन्थ्रोपोलोजिस्ट न प रिसर्चर न ख वेक यागु थो कार्यकाल तस्क हे बालक न्याय र गाजी सा आशा याना सुना अले वेकल नेपाल भाषा सेकिपी तसिनी पी जुन गुरुपिँदै गुरुपिसँग चाहिँ गेना नेपाल भाषा सेनिगु रका नेपाल भाषा सेनिगु विधि रका निगु सफुना पिकाना दिगुदु खला वेकल मेगुन यो कोहे सफु त सोया दिगुदु तर विशेषना झिसा नेपाल भाषा थोए सेनिको निगु झिया बच्चा तकिङु झिया चाहिँ बच्चा झि इन्भल्भ झुगो कारण वेक या त बकठाना मसिउ छ तसको हे सरल भाषा नेपाल भाषा जुन सेनिगु झिया वेकल याना भइचुना दिगुदु सबैकल न नेपाल भाषा न कल्चरल थो जुन कल्चर सम्बन्धी क्लासेस त गया दिएको छ।